0: साइनिंग 89.8 मेगाहर्ट्ज।
1: हार्दिक निमन्त्रणा। राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ साङकोटी होम महायज्ञ 2083मा हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।

सूचना संयोजन मनोरञ्जन को अटल साहिनी यो हो रेडियो साहिनी 99.8 मेगाहर्ज।

दसवीं बड़ी तू से को समझना न पाऊं मैं माया को आईरानी सपना दसवीं बड़ी तू से को

0: ये रुक लो पहन ले।
1: क्या कर रही है? तल भी आ गया
0: दौलत।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

सूचना संगीत मनोरंजन को अटल साहिनो यो हो रेडियो साहिनो 99.8 मेगाहर्ज़।

निमन्त्रणा। राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांस्कृतिक होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।

निमन्त्रणा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांस्कृति होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।

सूचना संगीत मनोरंजन को अटूट साहिनी यो हो रेडियो साहिनी 99.8 मेगाहर्ट्ज़।